अल्प शर्त करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइल लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। So

Bobby. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे छोटी और बड़ों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों चार को नहीं देखते।

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 पास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

Maybe you.

संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देख

Así मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। आप इस सेवा के विस्तार में so

सभी श्रेष्ठ आत्माओं देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ।

Subtle but safe.

0: सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक खाना नहीं करो इसकी, अपने बोल की वैल्यू रखो। आपका बोल जैसे किसको

Yes.

insan.

name.

one.

Apple.

Ha ha ha.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो जाती है फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी होते हैं।

सीट वाले का आर्डर मानते हैं। तो जब भी आप कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो

सीट पर स्थित हो जाओ।

0: आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बने। तो इतनी पावरफुल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम युग की हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू, एक घड़ी अविनाशी हो जाती क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाएगा, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ, श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊं। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपन ने हम जिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा, है चिंता? हाँ नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है। बेफिक्र बात है, बिजनेस मैन बेफिक्र बात है। दोनों ने हाथ उठाया। अच्छा नहीं, अभी आप नीचे करो। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठा सकते हो, शर्म आएगा। Oh. बेफिक्र हो, बेफिक्र होके तोड़ने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होके डरने ठीक नहीं होगा, तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी। अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो, तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो? बेफिक्र बच जाओ, हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच जाओ, ये याद रखना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Simon. Hola.

see.

Yes.

Sit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक आवश्यकता है। एक

0: Sayoki. आवश्यकता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी साधारण

0: Francesca, mira, body conscious key. Yes. की फोटो निकालेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज स्पष्ट सुना रही है कि आप और बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को योग

0: बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहा तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप पर सहन भी करना पड़ता, तो वो सहन नहीं है। लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता। से ऐसे समझे के हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन से नहीं चलो, एक तो को देख करके भी कभी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत हावी हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रहेंगे।
4: हमेशा के लिए प्रारंभ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी सुना है, मेरे

के संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Shut up.

समान बनने का और लक्षण रहे हुए।

मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती,
1: आप सुन रहे हैं शिवारी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज शिवरात्रि पर

kesempurnaan.

Happy Birthday.

इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे बने।

0: होशियार रहती बच्चों को पहुंचेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान समय की क्या पुकार है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: क्या न सूर्य इस्ते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Essence.

amiga attention. Major Tiga, Madhuban Mehra.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में देवता बीच में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते, अगर कभी कभी वाले भी हैं

Entonces,

सा फर्क है।

0: अब मेरा क्या रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक जमा करो,

0: Oye, cara, Narce. Cara.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता,
2: दूसरा इवन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: द्वारा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डॉक्टर्स का फर्क भी बाप दादा को सेवादारी ग्रुप देखने में आता है, सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं आपको फुर्सत ही नहीं होती, फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो अपना एक कार्ड जमा के रखो जिसमें ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो तो, और आगे शफा चाहते हो तो ये जो एड्रेसेस है जहाँ आप रहते हो वहाँ की एड्रेस हो सेंटर की, यहाँ जाके अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख के देते हो ये दवाई लेना ये दवाई लेना, तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति के तरफ से टेंशन, परिवार के तरफ से टेंशन और अपने मन की तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, ऐसी कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा आपके सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वो करो। डबल डॉक्टर हो ना, सिंगल तो रही हो, डबल डॉक्टर है तो डबल सेवा। जब पेशेंट आती है आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है ये चीज नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है, जो भी आवे उनको समय मुकरर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुला के और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा आपकी सेवा बढ़ती जाए। संदेश देना वो और बात है, संदेश से खुश होते हैं, लेकिन राजयोगी नहीं बनते हैं। जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकते। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना कार्य तो बहुत अच्छा कर, लेकिन सदा के लिए नहीं कर। दवाई खाए बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। तो दृढ़ता मेजॉरिटी बाप दादा ने देखा, इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए ये दृढ़

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिव के ऊपर अक्क के फूले चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो ये क्रोध का अक्क का फूल बाप दादा को अर्पण कर लो तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो।

0: Bilmiyorum. Agar tora bir kam hua, to aage ke liye mat rakhe. Chhod nahi dena, padhte rehna. Baap dada combined hai, kehte ho na. Saath hai nahi kehte ho, combined. ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिरार पर कर दो. लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो. दी हुई चीज अमानत हो गई. हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है. तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है. दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी पर तुम

विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन भक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे, और 24 बार करना है।

Nashed.

इससे है तो और बातों में नष्ट।

me.

기억 상감이 조급한 위시시 밥과 바르다네 사팔다 아프가 자남세다

Sechan, botica rata.

wajan garam sama

Samen.

संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चों का बाप दादा माना के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: ये सोचेंगे कि ये मुझे चोरे या मैं चोरू, कौन चोरेगा कौन। अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा, फिर क्या रख देंगे ना, रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंकेंगे तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते। अगर गलती से आ भी गई तो जब पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज दे देवे तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं नहीं, फेंक देंगे ना उसकी शिकल भी नहीं दिखाई दे, ऐसी फेंकी तो ये वापस क्यों मिलते? क्यों लेते? ये बाप दादा कहते हैं वापस लो, श्रीमत है ये नहीं है ना, फिर क्यों मिलते? वो तो वापस आएंगे क्योंकि उसका आपसे प्यार है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। उसको आप अच्छे लगते हो और आपको अच्छा समय वो वापस आती है ना,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर, सेवा अर्थात निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण भावना। तीसरा, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्ट।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से दिला के भी पास विता

0: some jam. Yep, pop that a pot some there. Tickle, tickle. Amari pito ankiena. Amari pito canena. Am be pot some there.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए पाप की शुभाशा है कि हर एक बच्चा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने के वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से आपको ढूंढा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी पूछे

is some ape.

Quelqu'un, c'est au capé.

Elken Bob. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से किसी

没有我是。

0: से खोल देते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष Snake।

0: चीत बन जाते। जो निरंतर सने में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सने सहज पाप समान बना देता। सने के पीछे समर्पित करना सहज होता है, जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात सने के दिन में सने में समय रहे। ऐसे सदा समय रहो, तो मेहनत का पुरुषार्थ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गई हो ना टीचर्स, जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। शरत है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे। लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है तो बाप द्वारा विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है। समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। आज समस्या को समाप्त, शब्द को ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतने हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुलाया,
1: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस चाबी को संभाल के रखना दृढ़ता ही सफलता की चाबी, और सफलता पाप के समान बनने साधन। सदा निश्चय और निश्चित भावी है, स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में फकर में सदा उड़ते रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah,

संकल्प वाणी और कर्म में पास हो के दिखे। हो सकते हैं, हो सकते हैं टीचर्स बताओ, हो सकते हैं। पंद्रह दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। क्यों कब

0: चलते चलते माया अलबेला और आलस रायल आलस ये रायल आलस अलबेलापन
1: अभ्यास चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई

Sunday.

Sunscreen.

Banana.

summer.

生活。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कोर का गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपन ने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोई इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी औरती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पास क्षमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तक विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में होती है ना, तो उसके सो बनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: best song.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक बच्चे को जय। इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती, लेकिन वरदान सभी को
3: फल द्वारा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इतना पक्का हो गया है जो चल

और पाप को भी क्या याद रहता।

चेकनो काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल में मैं अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ, ऐसे पक्का है। वैसे कहते काम काज करते भूल जाता है, लेकिन यहाँ

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

इसकी आवश्यकता

Oh, shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रहम आता है, चिल्ला रही है, रैप करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्व आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी भरोसे होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे आपने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के डाल डालियों और पत्तों की पालना करना। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्मा रूपी डाल डालिया या पत्तों को सकाश दे रहे। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

पैंट याद रखो, पैंट लगाओ, पैंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो, एक सेकंड में पॉइंट बन सकते। I'm sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। Yeah.

सारे लाइफ में हाथ का मेरा पन, हाथ का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है निशानी देख रहे। तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निर्स्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: 是我妈个谁？我啥谁？
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हमजिंस को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना देना इन्हों को। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो, साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, तो साइंस भी ज्यादा रिफ्लेक्ट।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारत सेवा नहीं, कोई ना कोई कमी है सेवा में। इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा, अपने को खुश निमा, घिरा हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। चेक करो, सारा धन सेवा की, लेकिन सारे दिन के सेवा के तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच भी जारी चलते रहे, ये नहीं ये, ये नहीं ये। और आपके खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा चिन्हात्माओं की सेवा की, होनात्माओं के वायुमंडल खुश हो जाए। ये
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय आवश्यकता है।

समय कर सको उतना प्रैक्टिस
Shaker uttered. ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अड़चन नहीं है। और पाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना पढ़ा सको उतना पढ़ो। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट?

0: स्पष्ट स्वरूप में देखते। बाप दादा ने इसकी निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई निमित बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। क्या है ना वायदा ये, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो ना मदद मिल जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हमें कल पहले भी थे, अभी भी है और हर कल हम बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि दो साल बनेंगे, तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो सदा याद रखो, निमित है, हमें कोटो में कोई है। कोटो में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता, इसलिए जमा करने की विधि है मन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, इसी रखो चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बताओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है बिन बिन, जानते हो ना ड्रिल शरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ट्रेन जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप है ऐसे आपके भी तीन रूप। इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See?

स्टेज सबसे

0: सादा के बैठ जाऊं, जैसे थक जाती है ना तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाओ, और दूसरा टॉप कास्ट सृष्टि चक्कर को देखो। सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले। समझा क्या कर रहे हैं? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हैं? रचता कौन?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए

Sois pas libre.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है?

Peace.

Jesse, Parmatma ucete uce, Vesi apa.

जाता।

0: about get off of me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

course.

0: सदा रमणीक रहते, सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते।
1: Sete.

So

0: मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने बना देते, राय बनाने वाली होती। क्यों? कि सने में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती, और जहां
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे देखो, कितने टीचर्स चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप के टीचर्स को

Erik, Dieter. Genesis. Yeah.

Jesse. चेहरे से सेवा करने वाली पाप को प्रत्यक्ष कर ही लेगी। अब समय आ गया है पाप को अपने चेहरे से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज़

சிவன் பீக் டிக்ஷனரி. Son.

0: Sankalapka. Apne se pratigya ki galti se bhi mera nahi kehna.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Peace.

misstep.

Esse é

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा देख रही है आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
2: समाप्त कर।
1: उनके साथ ऊंचे स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व

我现在就接地气，来弄气，都晓得气。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: אף כתו תלווה שבא פתא תלרם הריקי תלכה תלרם אורשי תלכה תלרם זה סדה אברת और मुबारक देते रहना ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे मेरा बाप कौन पहचानते नहीं है ना तो उनको पहचान सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है मुबारक है
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को एकदम अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रत समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में अशरीरी आत्मा आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ को करना है, चाहे पुराने चाहे नहीं, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो साथ चलेंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति, अभी ज्यादा चाहिए सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

strong.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना। बाप भी मर्ज कर

Kettle. सदा खुश रहती जो कभी कभी खुश रहती और कोई सदा खुश रहती सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के

और बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही है।

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो

0: नहीं सकता, बच्चे भी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। Sleep।

Just

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हंस रहे, आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धरनी पर बैठना ये तपस्या

0: pasar, Loki. Fällt mir durch Hilde. Fällt mir, weil bist du ey. Durch Hilde. Fällt mir.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाओ, कोई विशेषता या अपने या और किसकी। अपमान तो नहीं है, कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा। चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते, दिल खुश की बजाय दिल शिकस्त। तो समझा करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yoga che abbias cardewe.

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

चल नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी पहुंच लगता है वो पहुंच बाप को दे दो, देना नहीं आता। पहुंच उठाते भी हो फिर तक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या? याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्न है, अग्न कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगले है, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते, बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा टीका उठाया, विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपने मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये आशय है दृष्टि लेना भगवान से, समर्पित वालों की ये आशय है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की बात फियरत संकल्प के समापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर सीट रहेंगे, तो शक्ति आपके आगे सदा चियासर हो। आपकी शक्ति है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। कार्ट्रिज का नहीं, काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सकते हो, सकाश दे सकते।

और वो

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार से भी लोग भी कहते हैं जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। इसी

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कोई

0: शरारत कर रही है। जमा का शरारत अभी कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्राह्मण जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ,

0: har en ambilegge. Den med kjær bæsjengur. Liggen til kassen enig. Kjøkup. Bapse til kassen ekki. Nishanie. Har Brahman parivar. Se bisane. Sane nahi to maya ke vigan zyada aate kyunki pratipartha ke phal pani dala hi nahi to phal kaise mile kai bachche kehte hain gyan to samajh gaye baba se सर्व संबंध भी है लेकिन अनुभव नहीं होता. अनुभव है फल. सूखा ज्ञानी नहीं बनो. सने पाप का सने परिवार का सने सुतई बन जाता. क्योंकि बाप समान है ना. तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो. यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सेम कुछ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Creepy dulce thing.

Hoş geldin. Abgehen. Kuschig.

CPA.

कुछ कर।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थी स्वरूप पे देखने जाए कोई भी

del Quito a Elena. Rosa María.

Rakiek

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी निश्चयों पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे वो माइक माना जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसे भी रीति से बेहतर होगी। माइक बन के आवाज करे, ऐसे माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने समाज में ही करे, नहीं, माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

腰。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Phone.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Alokita di hadapanmu. As a subsidiary, so

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Awesome.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं सीजन का फल है, सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़े जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, कभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे, जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की, तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारी अटल रही तो प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय करके सब चोर करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया सामान से। इस लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए। तो आप यूज करो और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां। कितने मजे से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: होली मनाएंगे। अच्छा, समझते हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, ये नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अब हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मनस से आप नहीं उठा रहे हैं।
2: अच्छा, मुबारक हो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नवाबी किसमें होशियार बनेंगे? वंशा से नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता समय की

0: सब पत नहीं देते, साथ भी देते, अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से अगर खाते भी हो
1: से हुए को भी मना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखे

ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।